0: Rap is everything we have known. That is the beginning of everything. It says khala reverb nation has put record. Ubaid us khala, boss us khala, gazan far us khala.
1: बचपन से नेचर ही अपना था सेफर जब लेबलियां आई तो लगा वो फेवर ना साइन था कोई भी मेरे शहर से ना म्यूजिक से बना था कोई था पेपर काफी खुद कर्ज़